हम भास्कर को गुरु एवं शास्त्रों के द्वारा जानते हैं और जानकर उन दिवाकर का ध्यान करते हैं। इस कारण वे सूर्य हमें ज्ञान ध्यान के लिए प्रेरणा प्रदान करें।

महान गणित जय त्रिपवन महीप सुर नार्यासुर नेत नेत मंत्रण कहत तब सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अशेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोएके नमस्तं अनेके नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्पेशे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्ताते नमस्तं निर्काते नमस्तं निर्तूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रमाने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अबजवे नमस्तस्य अजवे आदेशं आदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वकूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं सोवनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अभरने नमस्तं अमरने नमस्तं जरारं नमस्तं कर्तारं नमो सर्वतंदे नमोस्ते अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सोहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो पोग पोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद तवे प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपरम है अजीत है अपीत है अबाह है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्ये समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगम